0: जब उजात तमत तमा
1: उनका जंतु मगर की उनका चेन पूरा ही एक्सो ताने बुझना किचोले
0: ओहो लिया लिचेरे
1: दिल दिया फील करें एफएम 90.4